तेरे ते दा एहसान सारी जिंदगी मैं ढोआ, तेरे हासिया च हसा, तेरे रोने च रोआ।

0: तन माझी।
1: मैं अंत दे विच दुआबा रेडियो दे तीवें कवि दरबार दे विच पेश हुए सारे कवियां दा बहुत बहुत धन्नवादी हाँ जिन्हां ने अपने कीमती समयां दे विचों समां कढ के साडे दुआबा रेडियो दे श्रोतियां नूं नवाजिया ते आस करदे हां कि सदा ही वह इसे तरह सानूं सहयोग दिंदे रहणगे ते अंत दे विच हरवंशियों वालों एक बार फिर सारे श्रोतियां नूं ते शायद दोस्तां नूं आदाब नमस्कार सत श्री अकाल कुदरत खैर करे अलविदा प्यारे दोस्तों आमीन।

असां कदे जोश विच आके अपना होश नहीं खोया, असी अग अंदर बाल दे, कदे आक्रोश नहीं खोया। हुण होना जो तू वेखी, मैं ता घमसान दा।

0: हारी गबरुआ हिम्मत ना हारी बेलोका।
1: तारा सिंह दी रचना जिहड़ी कि जोगिंदर पाल मल जी ने सांझी कीती है। इस तों बाद हुण मलकीत बुल्ला जी साढ़े एक शायर ने उन्हां दी ती है सिमी सोतरा जी ओ दिल्ली नूं जिहड़ी बंगार पाउंदी होई एक जिहड़ी रचना लेके हाजिर हो रहे ने। सिमी सोतरा जी दा दुआबा रेडियो दे प्रोग्राम गौंदी शाम दे विच निघा स्वागत है। सिमी सोतरा जी जी आयां
2: लेके असी दिल विच आए आ जुनून नी रद्द करवाने तेरे काले एक कानून नी लेके असी दिल

गल तेनू साड़ी मननी ही पैनिया, आकड़ जो तेरी पननी ही पैनिया। गल तेनू साड़ी मननी ही पैनिया, आकड़ जो तेरी पननी ही पैनिया। असी दिन रात

कई कई दिन बेहिसाब देख ले, तारने लगा के पंजाब देख ले, कई कई दिन बेहिसाब देख ले।

0: रेडियो रेडियो
1: जी दोस्तों सारे दोस्तों का दुआबा रेडियो मंच उत्ते निका स्वागत है। लैके हाजिर हाँ तुहाडी कचहरी च फिर तो एक बार नवा नवेला प्रोग्राम जिंदगी नामा हाल दुनिया आप सब नू आदाब सलाम नमस्ते ते प्यार भरी निकी सत श्री अकाल। दोस्तों उम्मीद करते हैं सब राजी खुशी होवोंगे ते इस हफ्ते का प्रोग्राम आखिरी प्रोग्राम फ्राइडे वाला दिन है लैके हाजिर हाँ तुहाडे विचकार ते नाल दी नाल हुण तो लैके तकरीबन दो सवा दो घंटे तुहाडा मेरा राबता इस तरह बरकरार रहेगा ते गल्लां बातां नाल नाल चलदियां रहणगियां ते तुसीं वी नाल जिहड़ा साथ दे सकदे हो। अज ओपन टाक नाल दी नाल होएगी ते विचार चर्चा नाल नाल चलेगी ते सब तो पहला अज दा विचार देश भर दीआं खबरां ते उस तो बाद किताब पंजाब दा जिक्र अगला जिहड़ा लड़ीवारता दे विच जिहड़ा चैप्टर है खोलण दी कोशिश करांगे जी ते अज तुहानूं उहदे विचों कुछ ना कुछ जरूर सुनावांगे जी। तो स्टूडियो का नंबर +358 44 976 1919 स्टूडियो का नंबर है तो प्रोग्रामा सपोर्ट किया हरविंदर जौल भैन जी सुमित जौल जी जगदेव संधु जी सिकंदर सिंह ओजला महेश जी

ज्ञान दी जोत जगावन दे लई अंदर चात लगाउणा चंगा, मगर किसे दे लगन नालों अपना राह बनाउणा चंगा। मन बता दे पले दी खातर जावर नाल टकराउणा चंगा, उस खुदा दी रहमत अंदर मनुखता दे कम आउणा चंगा। हक सच लई अड़ना सिखो,

एक बार ही मिलती है ये जिंदगी, काम आना किसी के है एक बंदगी। रोने वालों को जो

जुबां से जो दिल ही दुखाता रहे, जुबां से जो दिल ही दुखाता रहे, उसका जीवन तो है एक।

खुश रहे जो सदा उसकी ही मौज में, दास सच्चा वही तो है भगवान का। खुश रहे जो सदा उसकी ही मौज में,

0: वन दी गई रूते रूते बुते माही दाया दी अदी वन दी गई। लो जी आखिरी सॉन्ग जरा 3 नंबर जी
1: जी
0: हाँ जी जी